0: ସେସିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶା ଓ ପ୍ରେମର ବିହନ ବୁଣିଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିହନରୁ ଗଛ ଉଠି ଫସଲ କଟା ହେଲେ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और

0: अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचारित होउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज चके। এই কার্যক্রম ডিটিএস এবং নিউজ অন এয়ার আপ মাধ্যমে শুনিপারুছন্তি। আরম্ভ করুছু ভক্তি গীতর কার্যক্রম বন্দনা। প্রথমে শিল্পী সঙ্গীতা গোসাঁই।

0: मोहम्मद खम इत्यमुम उपनिरीक्षकम मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुम च मृत्योपरांतम वीरचक्रम प्रदत्तम। आंध्र प्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां अष्ट जनाः मृताः, अन्ये षट् जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चन्द्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते द्विलक्षरूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रहराशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-2000 वर्षपर्यन्तं व्यापार सौकर्यं, सम्पर्कं, राष्ट्रिय सुरक्षां, विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारामनः पश्चिम बंगस्य विकास यात्रां त्वरितं कर्तुं उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्ये विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋण प्राप्ति विषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना, प्रधानमन्त्री जनधन योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 वर्षस्य आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक सुणंद आज प्रचारित होगाक कार्यक्रम सूचना आमर स्वास्थ्य प्रचार कर सकाल 7:10 विषय रही दांत प्रत्यारोपण ए संपर्क आलोचना करेंगे डाक्तर रविरंजन साहू। प्रभात परिक्रमा प्रचार कर 7:25 कथिका शुणे 7:35 विषय रही मुक्तिजोधा बिरसा मुंडा कहबी तपन कुमार बती 7:40 मधुमालती सर्वे अर्जुन चरण सामल ओडिया आलबम गीत प्रचार कर 8:30 वैदेही सविलास 49वां भाग शुणी 8:45 9:00 गीत गीतिका नाटक अरण्यर सन्तान प्रचार कर 10:00 रचना और प्रयोजना हिमांशु भूषण सावत अभुला गीत 11:10 शुणी सोहिनी मिश्र और सरिता पंडा गई कतोटी आधुनिक गीत दासकाठिया गीत प्रचार कर 11:30 परिवेषण करेंगे चक्रधर देवता और चक्रधर महापात्र मंजुला मध्यान श्रोता एसएमएस जरिया हिंदी और ओडिया कथचित्र गीत प्रचार कर 12:00 खंजणी भोजन।

0: उस आग को आग सीनों में हम जो लगा के चले।
1: विश्व इतिहास रे भारतीय मुक्ति संग्राम जेतेकी थिला अनन्य सेतेकी थिला घटना बहुळ। ए संग्राम रे जोडी हेथिले देशर बड़ बड़ राजनेतांक ठारु चासी मूलिया एवं आदिवासी जनजातिर लोके आज सारा देशर लोके मने पकाउछंती देशर जने महान स्वाधीनता संग्रामी आदिवासी नेता बिरसा मुंडांको, जे आदिवासी मानंक मध्यरे बिरसा भगवान भाबरे परिचित। देशर इंग्रज शासन विरुद्ध रे संग्राम पई से आदिवासी संप्रदायर लोकमानंकु संगठित करिथिले। सेथिपई से इंग्रज शासकंक क्रूर नजरकु आसी बंदी हेले। मात्र 24 वर्ष बयसरे 1900 मसीहा आजर दिन अर्थात जून 9 तारीख रे रांची ठारे कारागार रे तांकर देहांत हेला। आज देश रे पालन करा जाउछि बिरसा मुंडा बलिदान दिवस। बिरसा मुंडा संपर्क में संक्षिप्त अभिमत रखती प्रोफेसर विजय कुमार टप्पू।
2: बिरसा मुंडा जहाँ को आदिवासी माने धरती आबा जगत पिता बोली डाकी थांती एवं बिरसा भगवान बोली पूजा करी थांती उलिहातु ग्राम रे सुगना मुंडा एवं कर्मी मुंडा परिवार रे नवंबर 15, 1875 मसीहा रे जन्म ग्रहण करथिले। सुगना मुंडा जड़े श्रमिक थिले, गरीबता कारण बिरसा मुंडा को पाठ पढ़े पारि नथिले, तेणु से तांको भौनी घरे आयु भातु ग्राम रे प्राथमिक शिक्षा पाई सालगा स्कूल रे से दाखल करथिले। सालगा स्कूल परिसमाप्त परे से बुर्जु प्राइमरी स्कूल रे पाठ पढ़ी एवं सरकारु से चाई बासा स्थित मिशन मिडल स्कूल रे पाठ पढ़ी किंतु सेठारे से बेसी दिन रही पारि नथिले। चाईबासा स्कूल परित्याग करी 1890-1894 आनंद पांडे नामक जने धनिक परिवार से घर चाकर भाव रे जोग देथिले। फास्ट

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में।

0: मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए

0: बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
1: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रहता हूं।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1 लाख के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के डाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी।

0: मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivicks after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
3: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management System will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. It added that the platform aligns with the goal of strengthening trade.

0: मतलब खूप झालो रे जेवण.
1: तीच कर बुडे साली.
0: जंगल रे उडेई देवी.
1: काही रे साली.
0: से कहीला जंगल रे अंगार उडेई दिले. जंगल जानबो बिसा तक भूली नाही. अंगार जमरे पड़ब तु गछ हब से गछ बड़ हबरे साली.
1: अंगार नहीं तु चल जीव. मत किस कहबुन
0: सुंडे शिवन उलकुलान शेष नहीं. भगवान मरण नहीं.
1: मरण नहीं
0: नहीं
1: तेबे मुई पुल्ली कांगला.
0: भगवान मरण नहीं रे शिवन उलकुलान शेष नहीं. भगवान मरण नहीं उलकुलान शेष नहीं.

0: अरे तानी, भगवान और कथा सुन, से कही जाई छी सिंह भूमर जंगल आउ जमी आमे पाई जीवू, आ जेमती आगर धरती थिला सेमती धरती हब, तुमे सबु सही धरती देखबो, मुई एका देखबे नाई। अरे ए धानी, से ठाकुरर नाटा कही दे रे, से गीतटा थरे गाई दे, बोलो पे हेगा मिसी होन को होयो डुडुगार, आ आ हिजुताना आ।
1: अरे अरे ए सुनारा, अरे सुन तो कथा को।
2: नहीं रे बरमी, सुनारा नहीं, सुनारा बरी गला।

0: तोर ना
1: अमूल्य
0: तु किस बाबू
1: हाँ मो बंगाली बाबू
0: मुंडारी कहू
1: अर्फानेज रे सिकिची
0: मोर संगे रहबु
1: हाँ तेबे तमे काकु तू कहबनी तमे कहबो तम कथा सुनिले फिरिंग सर मैंने आश्चर्य हेबे से मैंने सब बेले मुंडा पिला मन को एक कथा कहती
0: तुम्हें बड़ हेले दिखु हब
1: बाबू मन तो दिखु हो जात किए हेले हो पछि मु हेबिनी
0: किस हब
1: मु डाक्टर हेबी लोक मानकर सेवा करबी बड़ चाकरी करबी काई की चाकरी करबा कण खरा
0: चाकरी कले दिखु हब
1: अच्छा तमे कण हब बड़ हेले
0: लेखबी पढ़बी खूब पढ़बी
1: तापर कचरी को जीबी आबार खुंटखाटी गांव जमी वापस आन भी तापर कौन करीब
0: परचा रखे भी
1: सब मुंडा को जीसर कथा कह भी ए देखो ए टॉबरे पानी अच्छी गाधे पड़ा तमे गाधे सरले एक

0: बिरसा नहीं मा मुई भगवान मुई बिरसा भगवान मुंडा मान कर भगवान मुई मुंडार लगी मुई आनी देवी जंगल जमीन पहाड़ ये मुंडा मारे भगवान चाहूं दिले मुई भगवान है असली बा
1: बिरसा मोर मोर कुल को आए रे बाप
0: नहीं नहीं आ मुई भगवान तोर कुल रे धरवी नहीं मुई धरती आबा
2: भगवान है जिको
3: अरे थानी ए गया इटा की सत
4: हय हे सुगाना आम कुसे जंगल दबो जमीन दबो दिकुमन को निकाले दबो
3: देखलु कर्मी मुई तते कहि नै मोर पुओ तोते जेत की कोंदेइबो सेत की हसेइबो मोर पुओ धरती आबा मोर पुओ भगवान
1: मोर दरकार नहीं धरती आबा दरकार नहीं मोर मोर मोर बिरसा दरकार
3: अरे नहीं रे भगवान का बाप मुई और मा तुई एबे खाली हसबू हय हय एबे खाली हसु थबू

0: और बूढ़ा भाई मोन होशियार थिबो सादा हला सा मानन को रंग सादा मुर्गी सादा घुसरी खाबो नाही आगर दुई बरस अकाल पड़बो रे संगेलदार निया देखी थिलो एबे देखबो केते बड़ो नाश आसी जीवो सबु मरबे जीवे खाली विशाल लुक माने विशाल माने तार परे सुखोर दिन आसबो एबे अकाल पड़ो बेटी बेगारी देई सेवक पोटा लेखे खटबो नाही को
1: पोटा लेखे खटबो नाही
0: दिकु महाजन बनियार पेट पोषबो नाही
1: दिकु महाजन बनियार पेट पोषबो नाही
0: चासो करबो नाही खजना भरबो नाही
2: भगवान तुमको पूजा करबु नाही
0: अरे मोर कथा मानो सेईटा मोर पूजा हे
2: मंत्र कहि देबो नाही
0: देवी देवी हेले ई धुरा नदीर बंध को पत्थर दे बांधला के
1: आमे बांधलो
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं पत्थर सब को हटे ही दियो

0: identity, I don't leave me, sir.
1: So, what are you thinking, Mr. Mears?
0: Oh, frankly speaking, sir, Dr. Rogers has committed a blunder.
1: How?
0: See, Bisha, could examine Karikai Chanti. He hasn't completely gone mad.
1: So what you are for? Ask the collector to transfer him immediately.
0: Sir, Dr. Rogers, sir.
1: Oh, no. I am straight-faced. Deputy Commissioner, how may hukam dauchi?
0: Yes, sir.
1: Go and ask the collector to send him to the mortuary.
0: But, sir, see, already resigned, Koichi, sir.
1: What?
0: Yes, sir.
1: Oh, all right. Bisa ibechele achito.
0: Yes, sir.
1: Tumetaku arrest kala bele se utpat karnai.
0: Oh, no, sir. Bane dikhai ametaku arrest kachu.
1: Well, I want to meet Bisa Munda inside the jail.
0: Okay, sir. Please come with me, sir.
1: Mr. Amulya.
2: Yes, sir.
1: Ask him. Kahi ki se Munda manuku inside karuchi.
3: Well, I have never incited them.
1: What? Tumhe Ingraji jano. You know English.
3: Or file deck, sir.
1: Mr. Amulya.
2: Ta file rachi. He knows a little.
1: Well, tumhe chal khade kan karu thila.
3: Jangal jangal guru thili.
1: Munda manuku matau thila.
3: Nahi. Dharam katha kohu thili.
1: But why? Tumhe religion katha kahi bo kahi ki.
3: Mui Munda jatri Bhagwan. I am the Lord.
1: No. Tumhe Bhagwan nahi. तुम्हें शमान को रिलीजन कथा कहो नथीलो विद्रोह करिबा को इनसाइट कर छिला
3: मुई भगवान मुई धर्म कथा कहिची
1: सो व्हाई यू आर इन द प्रिजन
3: तुमर सरकार मते धरी छि हेले जेल ले थिले किसो भगवान हेबे नै
1: नो
3: जीसु के भी धरी थिले तार विचार हेला कि नै ताको क्रॉस ऊपर टंगले कि नै
1: शल अप यू फूल यू आर अ चीट तुमे घुटाए घुटाए ठको
3: छि इता मु को दार जवाब हलानी साहेब
1: आई एम नॉट बाउंड टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस
3: तबे मुई किस तुनी रहबी
1: नो हाउ मे क्वेश्चंस करीबो तू मे आंसर दबो मालूम
3: मुई देवी आई आई एम आल्सो नॉट बाउंड
1: तू मे जंगल मुना मान को मताई छे टैक्स बंद करबा को कही छे
3: मुई तुनी रहबी साहेब
1: तू मे विचार मुना मान के सामने रहबो बिफोर Shimane Chani Be, they will know you are not their lord. You are a bloody chief. Tumar Okil Darkar, do you need an advocate?
3: Kanji?
1: For self-defense?
3: Nahi. More Darkar nahi. Ukil Delebi Munda Jail Kato.
1: All right, Mr. Amulya.
2: Sir.
1: Look after him.
2: Yes, sir. Bisa.
3: Kanki aslo.
2: Tamuku dekhibaku.
3: Kiso dekhbo? Kanki dekhbo?
2: Tama deho jemti kharap na hoy, doctor hisab ra setak dekhiba mor kartabya. Seith pe aschi. Sora Bisa.
3: Nahi nahi. Mor de hato diwani Amulya. Tame dikku.
2: Na Bisa, mu dikku nahi.
3: Ai ai tame dikku.
2: Bishwas karo, mu dikku nahi.
3: Kanki. कहीं तुम्हें दिक्कू हेलो अमूल्य खाइब बोली पिंधब बोली पलकी चढ़ब टमटम हाँकब रही सब हब बड़ लोक हब
2: ना ना बिरसा ना
3: मो संगे कथा हब नहीं मुई भी तुम संगे कथा हेबी नहीं तुम्हें मत नहीं चिन्ह मुई भी तुमको चिन्ह नहीं
2: ना ना तुम्हें सेमती कहने बिरसा मु तुमको चिन्हे तुम्हें भी मत चिन्ह से छोट पिला बेलू मु जानी थी तुम्हें निश्चय दिन बड़ हब खूब बड़
3: गोटे काम कर
2: कुह
3: मोर विचार लगी सरकार किस करब मत कह मुझे पाल गदारे निहा लगला धुआं देखी सरकार डरी गला बंधुक देखे मत धरला अमूल्य मत कह
2: हमेशा कह तेबे किसी दिन समय दरकार
3: तो विचार डेरी हब
2: ना ना शुणु शीघ्र विचार कर
3: विचार जल्दी हब ना जल्दी के करबे
2: तुम्हें कौन जानो इमाने विचार करिबो को डेरी करिबे अच्छा बिरसा तुम्हें कौन प्रॉफिट
3: मुई जानी छी अमूल्य मुंडांकर कुलंकर सरदार मानकर विचार जल्दी हुए नहीं जेल भीतरे हाजत भीतरे दिनो जाए मासो जाए बसो जाए मोर विचार करबा।

0: तु किन्तु भूल कलु साले आलो धानी मुंडा को धरे देइथिले 20 25 टंका पाई जाय थांतु
1: मुई केमति जानबे रे दारुगा से पिसाई थी छी बुढाटा पानी मागला मुई पानी देली गातो सुआ छेली ग्वालर मजा उपरे सुइला आरुली भागी गला बिसाई थी छी जानी थिले ताकु की रहबा को थान देई थाती 25 टंका केस कौचुरे दारुगा एबे तो 25 टा डाबू पैसा देले जीवी धानी को देखले तार गुड़ो भांगबी ताईकु तुते खबर देबी
0: आलो बिरसाइक मानक पर एमते खपा होचु काहे कि आलो तो मोर डोनका भी तो जणे बिरसाइत
1: हे नै तो आउ किसो धान बिकी बिरसाइत मानकु खाइबा को देला सफा लुगा दरकार देहि माखफा को हल्दी दरकार तार परे देखुचु तो मोर कुले गुटे पेठरे गुटे तुई बुढ़ाटा तो जेल खटलु मोर हाल किसो हबो तुई भी तो मानलु नहीं मोर धान मरे भागी समान कर देलु मोर की दुसो कह
0: ताको तो संभाली रखी पालु नहीं
1: रखले किसे रहबो मुंडा मान कर जीत तुई किसो जानु नहीं मते कहला भगवान सबु दब एबे देख तो ईटा दीछी भगवान ई टुकेटा दीछी जंगल जंगल घुरी कुली गुटौछी ई बोले अटा दीछी भालू खेदुछी
0: आहा की बिहल तोर कौन है जी तो रूप
1: मोर कपालटा फुडा रे धरुगा रूप आउ थिबो की
0: सही कथा तो मु कहुचिलो साली
1: डोनका को मान की देखी मोर आबा आरांधी कला सेटा बुढ़ाटा मुई धांगड़ीटा तार नातनी परी
0: अच्छा तो ते कौन बिरसा बाहो बोले कोई थिला
1: नहीं गो नहीं से तो संकरा गार परमी को धुराई मुंडार नानी को धुराई भी तो बिरसाइत बिरसा कहला परमी को आरांधी करबो हेले सेमती आरांधी थू धांगड़ा धांगड़ी परी रहबे नहीं भगवान और काम करबे
0: आलो से परमिता पर से कौन पुआन संगे घुरी उलुची
1: परमितार मन को माने छिगो एबे नुही जेबे परमी पिला थिला
0: एको ता जानी भी बिरसा ता को पसंद कला
1: तुमे बुझबो नाई गो बिरसा कला धुराई मुई परमी को आरांधी करबी हेले मुई तार मरत हेबी नाई से मोर काम करबो
0: ओहो सथे जेंती सेठ महाजन आलो भिकारी मुंडा टाए तार अपनी इत्ते तोर कौन ना तार कामो करीबो परमी कौन कहला
1: सफा कही देला परमी जाजा कोनु नहीं केई नहीं से आरांधी करबो नहीं कोनु तार मनोर सिंगुआ
0: सतेरे लो साले तो कथा भाबिले भारी दुख लागे घरे तोर धान गोला थिला सब मु आगरु देखिच
1: थिला तो हेले एबे नहीं है सबु गला
0: अलो जीवनी बिरसाई के लुकाई की
1: मुई मुई हेले बिरसाई मोर घर चली देची बिरसा मोर मरत तो हुंडाटा बिरसा नाम नहीं नाचुची अकल सबू सरी देला

0: तोर केड़े गोपाल रे कानू कांके
1: एंती आरंदी मोर दरकार नहीं से मोर मरद हब मुई इठी रहिबि से जंगल जंगल खेदी बुलिबो मरद संगरे धांगरी रहिबो नाही
0: कहि छि त तोर कपाल मुंडा मनकर भगवान को तुई आरंदी होबू
1: होय खाली बिरसाइत मानकर भात फुटाबी हल्दी बाटबी नाही नाही एंती आरंदी मोर दरकार नाही।

0: अभी को
1: ए देख देख तो सानी मुंडा मन कर आगे आगे भगवान आसुची मुई कली तु ताको कहबू साली कहबू
0: ने भगवान गुड़ पुछी दे भगवान गुटे कथा
2: कहबू तो
0: तु परमी पाखु तोर बला खोड़ू वापस नहीं आस से घर बांधबो आरांदी करबो पिलार मुह देखबो मुड़े सिंदूर दबो
2: वापस नहीं जीवो आउ किस
0: तु तक गुस्सा हबु
2: नहीं साली तु मत किसी दबु नहीं
0: किस देवी भगवान मोर मरद को नेलु घर द्वार देली अमार देली खाली अच्छी पिलाटा
2: पिलाटा दबु
0: नबु कहलु तारु दूची तु मुंडार भगवान तु मोर धरती आबा हेले पिलाटा किस करबो
2: तार देई तोर नाम रहबो मुई तकु पुसिया कली अरे कंद्रु कहीं
0: मत तोर काम करवा को दबु तो
2: तु तो करूचु आई मोर संगे आई बस बस बस बस गुंडा मान ठीक बेल आसल तुम सब तुमको रास्ता दिखा
3: दिखाओ
2: आगु कह रास्ता खूब खतरनाक मरण हेले डरब ना तो तुम्हें सब मोर कथा सुनबो जदि तुम्हें हबो बीर साहिब मुंडार दुश्मन किए जमीदार बनिया कि साहब सरकार सब सब आम दुश्मन आम लड़ई करबू मुंडा सुराज लगे देश सुराज लगे जंगल माता कांदूच ताकु रखबार लगी आम सब लड़ई करबू पिकुर संगे सरकार संगे
3: तार परे किस हब भगवान
2: आम जंगल अच्छी गुरु अच्छी ताकर बंधुक अच्छी लाछी देवे हेले आम कि डरी जीवू मुई धर्म कथा कही बुलुची लड़ी कथा भी कहूची धर्म कथा सुनी साधु हबो नहीं ये लड़ी पारिबो ताकु मोर दरकार
3: भल कथा कही चाहे भगवान
2: लड़े लगी गया मुंडा मोर गुटे हाथ सालीर मोर डोनका मोर आउ गुटे हाथ इटा सालीर घर ई घर लड़ई रो घर हेला सब बिरसाते ताकु आसबे राती हेले आम सब रात्रि मिसबू
3: हेले आमे किस करू
2: मोर दुईटा दल गुटे तुम्हें सब बुढ़ा मान मत लड़ेर कायदा कहब तुम्हें हब पुराणक गया मुंडार दल लुक हे लड़ेर दल आनारा एवं भी छोट अच्छी समान हे नानक आमर काल आसी जा तुमको मुशटा वापस करदेवी मोर मुंडा देश खेती रे हिड़ रही ना सब मटी सब मुंडार सब फसल सब मुंडार बेठी नहीं जमीदार नहीं सब मुंडा जमीर मालिक मो देश लड़ीर नहीं ठेगा हथियार बलिया किसी नहीं हमें सब दुश्मन को कहवा देख देख रे साहेब सरकार देश रे दिकु जमीदार बलिया ठाकुर ये अमर राज ये जंगल अमर आमे जंगल मातर पुओ पाती तुम्हें सब सावधान थी किस रखबो मोर कथा
3: रखबो भगवान
2: धीमा धीमा लड़े मोर दरकार नहीं एका संगरे सौ मुंडा गोटे देश को लगे लड़ाई करबो मोर ई लड़ाई रे नाम हला उल गुलाम को सब मुंडा उल गुलाम उल गुलाम उल गुलाम धनी है धनी मुंडा ननका कहीं गला ननका
3: बुलू उपरे धनु तीर धरी साहेब पुलिस को लाछू छी
4: भगवान भगवान साहेब सिपाही बंदूक नहीं आसी गले रे
2: ए मुई भगवान है मुई बोले मुंडा मुंडार भाषा मुंडारी बिकुर भाषा साहेब भाषा अमर भाषा से बुझबो नहीं आए मंजा सोने को सा धावा दिया तुम्हारा हथियार दे दिया
3: हमें हथियार छोड़ नहीं तुम्हें बंदूक रखी पलाई जा
2: मुंडा सदा माने आसा सामना को आसा कथा को
3: ଆମେ ଚାପୁଣ୍ଡା।

0: Stop firing! Order Nepali, no more killing, Inspector.
1: Kintu sir, Operation Bissa?
0: Operation Bissa? Operation Bissa. Chalichi, chalibo, chalitibo. Until Bissa is captured. Do you understand, Inspector?
2: तुई सुन ले भगवान साली एठी रहिबो नहीं कहूचे
3: काई की रे साली आ मुई एठी की पले आसी छे जे रहिबे तुई एठी प्रो सरकार चिंता करबो नहीं जाकू धरवा कु मुंडा देश चसी पखुचे से तो एठी एका रहिचे रे
2: साली चाऊल आनिची भगवान
3: तरुगा देची साली
4: आई मोर मरद को धरबा को देची 20 टंका ने भगवान
3: हेले हेले चाऊ रांधू नहीं चुबे करी पानी पीबू चुला रे चुई देले सब देखबे तू जा बस रे धनी बस कह दो पुलिस जुलुम किमती अछे
2: पहान जमीदार बनिया संगे मिशी मुंडा मान को धरबा को फंदो बसेची पुलिस
3: बुझलो साली हुलगुलानो रीति ठा अलगा तोर पुओ मरद धानो घरो सबु नेली परमी रवि सबु नेबी
4: तुई तू करुछु भगवान
3: नहीं नहीं केते मुंडा रोइले नहीं मोर देहटा भी रोइबो नहीं हेले उलकुलानोर सेसो नहीं भगवानोर मरण नहीं ये कथाटा सबके कहि देबो साली
4: सुई पडु नहीं कहकि रे भगवान
3: तुई छे चेतीछु
4: निदो नहीं
3: चेती था हर बेला सुइबो
4: परमी भी चेतीछि जे
3: हे परमी तू ही चेती छू देख निया धराबू नहीं धुआ उठवो
4: अरे गातो श्वास असी भुजन नहीं माझी तमारिया तुमको टिके माया नहीं रे तुम्हें मुंडा जात बिरसा को धरे थिलो 500 टंका पाइलो तू
3: साली जा जा तू तू तू चली जा
4: नहीं नहीं मुई जीबे नहीं गो
3: ओ मोर हुकुम मुंडा भगवान कहचे तू चली जा साली चली जा
0: हाय रे माजी इटा के भोल हला 500 टंका लागे भगवान को धरे दलो
5: ए चुप कर क्या समझते
3: मुंडावान सुनो मोर कथा कांदो पछे मजिस्ट्रेट आगरे तुम्हें सब कहबो मते जानी ना मोर कथा मानी उलगान करिचो मते ठोको को चुरो को हेले तुम्हें मरो नहीं भगवान और मरो नहीं रे

0: अजना लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: प्रचार करुछु केतुटी आधुनिक गीत प्रथमी शिल्पी सोहिनी मिश्र शिल्पी कंठरे राधामोहन सडंगी रचना

0: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइजिवो ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु
1: ठीक लागुनी स्कैम भी हेइ पारे।

0: साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 बने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु।
1: अच्छा दास बाबू आपण घर
2: ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା।

0: पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi says

0: विश्वास रखी आज चेटिनाड सीमेंट
1: शक्ति जहाँ वर्ष वर्ष नुहे बर पीढ़ी पाई रही था चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
2: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु
3: ठीक लागुनी स्कैम भी हेइ पारे।

0: और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे

0: लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है, और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए

0: 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपण माने कार्यक्रम सुनचंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रचारित हेउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज जगे। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारिबे एही विज्ञापन परे।

कार्यक्रम शेषे कथचित्र तु एका मसाहा भरसा गीतटी द्वैतकंठ गई उदित नारायण एवं ईरा महांती।

कार्यक्रम शेषे कथचित्र फास्ट लव लेटर गीतटी को गई एसपी बालसुब्रमण्यम एवं लता मंगेशकर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र शुणु चलित अधिवेशन कार्यक्रम संपर्क में सूचना गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानस 43वां भाग संध्या 6:10 उदय भारत संध्या 6:30 शुणे देशर प्रगति को त्वरान्वित कर सामुद्रिक अर्थनीति आलोचक डॉ प्रफुल्ल कुमार साहू ओडिया कथचित्र गीत राति 17:02 जिला हालचाल शुणे मलकानगिरी जिला संपर्क राति 17:25 कृषि संसार राति 17:30 शुणे बैगण फसल सूत्रकृमिजनित रोग और तार प्रतिकार संपर्क में डॉ जयंत कुमार मोहालिक सहित आलोचना हिंदी चलचित्र गीत राति 8:02 हिंदी शिक्षा कार्यक्रम राति 8:30 शिक्षादान करेंगे क्षेत्रवासी त्रिपाठी शिक्षा ग्रहण करेंगे रीतिका प्रसाद कार्यक्रम बयसर कृष्णचूड़ राति 9:30 एथेरे शुणे कंठशिल्पी करूणाकर सेठी सहित साक्षात्कार केन्द्र सरकार 12 वर्ष पूर्ति अवसर में स्वतंत्र कार्यक्रम रेकर्डिंग प्रचार कर राति 10:00 श्रोता अनुरोध में ओडिया कथचित्र गीत राति 10:35 आसंताकालीर कार्यक्रम सूचना भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना सका 6:05 अनुचिंता सका 6:35 उपस्थापना शारदा प्रसाद कर श्रीमद भागवतर 22वां भाग सका 6:40 सका 7:10 आमर स्वास्थ्य शुणे मानसिक रोगी प्रति परिवार लोकों दायित्व और कर्तव्य आलोचना करेंगे डाक्तर नीलमाधव रथ प्रभात परिक्रमा सका 7:25 सका 7:35 कथिका एथेरे शुणे आम सामाजिक व्यवस्था उषाव्रत आलोचक निर्मल चंद्र पही सका 7:40 राग मंजरी कंठशिल्पी तन्मय कुमार होता संगीत ए महेश्वर राव वैदेश विलासर 50वां भाग प्रचार करिबु सका 8:45 दिन 10:00 प्रचार करिबु नाटक सुवर्ण वसुधा रचना डॉ प्रसन्न कुमार मिश्र प्रयोजना हिमांशु भूषण सबत आम गीतरे आधुनिक गीत प्रचार करिबु दिन 11:10 कंठशिल्पी सिद्धार्थ मिश्र ओ झुमकी रथ दिन 11:30 ओडिसी कीर्तन परिवेषण करिबे दुर्गाचरण मार्था एवं साथी तेलंगी वाद्य प्रचार करिबो दिन 10:00 परिवेषण करिबे नवकिशोर नायक एवं साथी नारी महल दिन 20 शुणिबे उपनिषद रे नारी आलोचना करिबे बीणा पाणी पंडा जुबवाणी रे आईना अपराह

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिवजी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाईं ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

0: gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करिपरिबे फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाको बीएलओंको निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु अधिक सूचना पई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट एप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधार उपयोग करंतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांक द्वारा जनहित रे जारी
1: प्रचार करुछु ओडिया कथाचित्र गीत प्रथमे गाइछन्ति बाबुल सुप्रियो ओ पामेला जैन कथाचित्र शपथ।

0: राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहां से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: मंत्री कहिछन्ति एही प्रक्रिया रे जड़ित आह्वानर मुकाबला पई गुइंदा संस्था एवं केन्द्रीय तदंत ब्यूरो समेत समस्त साइबर सुरक्षा संबल को नियोजित करा जाय छि। दिल्ली रो एक अदालत आज नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र प्रघट मामलार अभियुक्त मनीषा वाघमारी जमीन आवेदन को खारज करिछन्ति। मामलार तदंत करुथिबा केन्द्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई एवं अभियुक्त पक्षर् युक्ति शुणिबा परे दिल्लीर राउस आवेन्यू अदालत एही निर्देश देइछन्ति। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आज नूआदिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एलपीएमएस विनिमय को उद्घाटन करिछन्ति। यहां भारत स्थल सीमार कार्गो प्रक्रियाकरण एवं यात्री जातायात को डिजिटलाइज तथा सुव्यवस्थित करिबो। एही अवसर में आयोजित समावेश को संबोधन कर श्री शाह कहते एक आधुनिक एवं प्रजुक्ति विद्या परिचालित सीमा परिचालना व्यवस्था गठन दिगरे यह एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। यह मंच विकसित भारत 2047 संकल्प सहित जोड़ी हो रही वाणिज्य सुविधा जोगाजोग एवं जातीय सुरक्षा को सुदृढ़ कर।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं।
1: श्री शाह गुरुत्वारोप करि कहिथिले सरकार डिजिटल प्रजुक्ति विद्या एवं दक्ष परिचालना व्यवस्था माध्यमरे सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करिबा लागि प्रतिबद्ध। आपण माने संवाद सुनिछन्ति आकाशवाणी रो। विश्वव्यापी कृषि क्षेत्र में देखादेइथिबा विभिन्न गुरुत्वपूर्ण आह्वान उपरे आलोचना पई मध्यप्रदेशर इंदोरठारे आज ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आरंभ होइछि। सम्मेलनरे 21टी देशर प्रतिनिधिमाने सामिल होइछन्ति। चलित वर्ष ब्रिक्सरे अध्यक्षता करुथिबा भारत एही कृषि सम्मेलनर आयोजन करुछि। सम्मेलनर प्रथम दिनरे आज कृषि कार्यगोष्ठी बैठक अनुष्ठित होइछि। बैठकरे कृषि सम्पर्कित विभिन्न आह्वानगुडिकर कारण उपरे आलोचना करा जाइथिला। समग्र विश्वर कृषकमानंक उपरे जलवायु परिवर्तनर प्रभाव सम्पर्करे आलोकपात करा जाइथिला। परिवर्तनशील पाणिपाग एवं प्राकृतिक विपर्यय किपरि कृषि उत्पादनकु प्रभावित करुछि एवं एहार मुकाबिला पई किभलि भाबे अधिक सहनशील कृषि प्रणाली प्रस्तुत करिबा नै पदक्षेप नियाजाई पारिबो से विषय रे ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रगुडिकर कृषि विशेषज्ञ माने निज निजर मतामत रखिथिले। आसंता 13 तारीख पर्यंत हेबाकु थिबा एही सम्मेलनी रे खाद्य सुरक्षा, कृषि वाणिज्य, जलवायु, अनुकूल कृषि अभ्यास एवं कृषि क्षेत्र रे नवसृजन उपरे व्यापक आलोचना हेबो। ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रगुडिकर मध्यरे दृढ़ सहयोग सृष्टि करिबा एवं सहभागिता माध्यमरे विभिन्न आह्वानर समाधान खोजिबा एही सम्मेलनीर मुख्य लक्ष्य रहिछि। केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कहिछन्ति गत 10 वर्ष मध्यरे सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएमएसएमए माध्यमरे गर्भावस्थारे महिलामाननको पई स्वास्थ्यसेवा सुविधाकु निरन्तर सुदृढ़ करिछन्ति। नूआदिल्लीठारे आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानर 10 वर्ष पूर्ति पालन अवसरें देशव्यापी उत्सवर शुभारंभ कर श्री नड्डा एहा कहिछन्ति। गर्भवती महिला एवं सेमानंक परिवार पई उद्दिष्ट मागणा स्वास्थ्यसेवा संपर्क में अवगत करिबा निमन्ते राज्य तथा केन्द्रशासित अंचल उत्सव माध्यमरे सचेतनता और लोकसंपर्क कार्यक्रम आयोजन करा। श्री नड्डा कहिछन्ति एहि पदक्षेप द्वारा देशर महिलामाने गर्भावस्था समयरे आवश्यक स्वास्थ्य सेवारु जेपरि वंचित न हुवन्ति ता सुनिश्चित करा सहित सेमानंकु समयोचित चिकित्सा सुविधा जोगाई दिया जाउछि। एहि व्यवस्था द्वारा मातृ मृत्यु हार 86% ह्रास पाइछि बोली श्री नड्डा कहिछन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपराह्नरे कुवेत्र अमीर शेख मेसाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाहंक सह टेलीफोन जोगे आलोचना करिछन्ति। पश्चिम एशियारे वृद्धि पाउथिबा सुरक्षा परिस्थिति उपरे दुई नेता आलोचना करिथिबा जणापडिछि। उत्तेजना वृद्धिकु नै प्रधानमंत्री श्री मोदी गभीर चिन्ता प्रकट करिबा सह यथाशीघ्र पश्चिम एशियारे शांति एवं स्थिरता फेराइ आणिबा लागि उत्तेजना ह्रास आलोचना एवं कूटनीतिर आह्वानकु दोहराइथिले। कुवेतरे रहुथिबा भारतीयमानंक निरन्तर कल्याण ओ सुरक्षा प्रति व्यक्तिगत ध्यान देइथिबारु कुवेतर अमीरंकु श्री मोदी धन्यवाद जणाइथिले। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देशरे जल संरक्षण एवं जलर सठिक परिचालना को सुदृढ़ करिबा लागि जलशक्ति मंत्रालय द्वारा नियाजाइथिबा विभिन्न योजना एवं प्रकल्पर आज समीक्षा करिछन्ति। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ସମିତି

0: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्ते श्रोताओं, ये आकाशवाणी कटक है। आज हिंदी शिक्षा कार्यक्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं क्रिया के भेद के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं गुरुजी क्षेत्रवासी त्रिपाठी एवं छात्रा के रूप में हैं रीतिका प्रसाद। तो चलिए सुनते हैं क्रिया के भेद के बारे में।
2: गुरुजी प्रणाम।
3: हाँ आशीर्वाद। आओ रीतिका बैठो।
2: जी गुरुजी।
3: अच्छा हम पिछले दिन क्या पढ़े थे?
2: समापिका और असमापिका क्रिया के बारे में पढ़े थे गुरुजी।
3: तुम्हें यह सब याद है?
2: जी बिल्कुल याद है।
3: तो बताओ असमापिका क्रिया किसे कहते हैं? असमापिका क्रिया किसे कहते हैं बता?
2: असमापिका क्रिया असमापिक
3: असमापिका क्रिया किसे कहते हैं? याद नहीं रहा, शायद याद नहीं रहा। बता देता हूँ, जिस क्रिया से वाक्य तथा कार्य की समाप्ति का बोध नहीं होता। क्या है?
2: जिस क्रिया से वाक्य तथा कार्य की समाप्ति का बोध नहीं होता
3: उसे
2: असमापिका क्रिया कहते हैं।
3: असमापिका क्रिया कहते हैं। बीच बीच में भूल जाती हो, आगे की ओर ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है?
2: जी गुरुजी।
3: तो ये जो असमापिका क्रिया, इनके एक दो उदाहरण याद है?
2: जी गुरुजी।
3: तो बता।
2: खाकर और आने वाला।
3: ठीक है। अच्छा अब समापिका क्रिया के एक दो उदाहरण दे सकती हो?
2: जी।
3: तो बता।
2: घोड़ा दौड़ता है।
3: घोड़ा दौड़ता है, तो इस वाक्य में तो समापिका क्रिया किसे कहोगी?
2: दौड़ता था।
3: नहीं नहीं, तुमने कहा था कि घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पर समापिका क्रिया बनती है दौड़ता है, ठीक है? तो दूसरे वाक्य में क्या उदाहरण लोगी?
2: राम घर जाएगा।
3: राम घर जाएगा, तो इस वाक्य में तो कौन सी क्रिया है, क्रियापद कौन सी है?
2: जाएगा।
3: जाएगा, ये जाएगा कौन सी क्रिया की कोटि में आती है?
2: समापिका क्रिया।
3: समापिका क्रिया की कोटि में आती है, ठीक है? तो तुमने याद किया, तुमने पढ़ाई की, फिर भी बीच बीच में चूक जाती हो, तो आगे की ओर जरूर ध्यान देना, अभ्यास करते रहना, ठीक है? ऐसे ही करते रहना।
2: जी गुरुजी, आज हम क्या पढ़ेंगे?
3: आज हम कार्य व्यापार की प्रधानता के आधार पर क्रिया के भेद की चर्चा करेंगे।
2: जी।
3: तो शुरू करें?
2: जी हाँ।
3: तो सुनो, कार्य व्यापार की प्रधानता के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
2: दो भेद।
3: एक मुख्य क्रिया और दूसरी है सहायक क्रिया। क्या है?
2: पहला है मुख्य क्रिया और दूसरा है सहायक क्रिया।
3: सहायक क्रिया।
2: यह मुख्य क्रिया क्या है गुरुजी?
3: मुख्य क्रिया, तो सुनो, जिस क्रिया से एकमात्र मुख्य कार्य व्यापार का बोध होता है, सिर्फ एकमात्र मुख्य कार्य व्यापार का बोध होता है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं?
2: मुख्य क्रिया।
3: किसे कहते हैं?
2: जिस क्रिया से एकमात्र मुख्य क्रिया व्यापार का
3: मुख्य कार्य व्यापार का
2: मुख्य कार्य व्यापार का बोध होता है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं।
3: मुख्य क्रिया कहते हैं, ठीक है?
2: हाँ, मगर कैसे?
3: कैसे तो देखते हैं। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण ले लेते तो ये समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं।

0: एक वाक्य लेते हैं, मानो ये वाक्य है वो स्कूल गया। क्या हुआ?
1: वह स्कूल गया।
0: तो बताओ यहाँ क्रिया कौन सी है?
1: यहाँ क्रिया गया है।
0: गया, यहाँ पर गया है क्रियापद, ठीक है। तो ये गया जो क्रिया है इसका मूल रूप क्या है?
1: यह तो भूतकाल में है गुरुजी।
0: हाँ हाँ,
1: इसका मूल रूप है जाना।
0: सही, सब सही फरमाया। ये जो गया है ये भूतकाल में है, इसीलिए अगर इसके मूल रूप को हम ढूंढेंगे तो हमें जाना तक जाना पड़ेगा। तो गया का मूल रूप है जाना, ठीक है। तो ये जाना ही यहाँ पर मुख्य क्रिया है। कौन सी क्रिया है?
1: मुख्य क्रिया,
0: ठीक है।
1: तो अगर हम कहेंगे
0: हाँ हाँ,
1: चिड़िया उड़ती है,
0: ठीक है,
1: यहाँ पर उड़ना ही मुख्य क्रिया होगी।
0: हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर बताओ अगर हम कहें कि सीता भात खाती है, क्या?
1: सीता भात खाती है,
0: तो मुख्य क्रिया क्या होगा?
1: जी यहाँ मुख्य क्रिया खाना है।
0: खाना है, ठीक है। अब हम सहायक क्रिया पर चर्चा करेंगे।
1: गुरुजी सहायक हाँ? क्रिया क्या है?
0: सहायक क्रिया बताता हूँ, सुनो। जिस क्रिया के द्वारा मुख्य क्रिया में अर्थभेद उत्पन्न करने में सहायता मिलती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। क्या हुआ?
1: जिस क्रिया के द्वारा
0: हाँ?
1: मुख्य क्रिया के अर्थभेद उत्पन्न करने में सहायता मिलती है
0: हाँ हाँ,
1: उसे सहायक क्रिया कहते हैं।
0: सहायक क्रिया कहते हैं।
1: जैसे कि
0: एक उदाहरण लेते हैं, कमला का पत्र पढ़ा गया। क्या हुआ वाक्य?
1: कमला का पत्र पढ़ा गया।
0: हाँ, ये जो वाक्य है इसमें पढ़ना जो है ये कौन सी क्रिया है?
1: मुख्य क्रिया है,
0: ठीक है। तो गया जो है इसका मूल रूप है
1: जाना,
0: ये कौन सी क्रिया है?
1: सहायक क्रिया है,
0: क्योंकि गया ही पढ़ा में अर्थभेद उत्पन्न करती है। अगर गया को हम उससे अलग कर दें तो वाक्य क्या होगा? कमला का पत्र
1: पढ़ा।
0: तो ये पढ़ा जो क्रियापद है इसमें से पूर्ण शब्द पूर्ण अर्थ निकल सकती है क्या?
1: नहीं,
0: बिल्कुल अर्थ उत्पन्न करने में ये सक्षम नहीं हो सकती है। इसीलिए ये गया जोड़कर इसी के माध्यम से पढ़ा जो क्रिया है इसमें से अर्थभेद उत्पन्न करने की क्षमता पैदा की जाती है, ठीक है। आई समझ में?
1: जी नहीं।
0: तो सुनो, अगर हम कहेंगे कि कमला का पत्र पढ़ा, दोबारा ध्यान से सुनना हाँ, अगर हम कहेंगे कि कमला का पत्र पढ़ा तो अर्थ उत्पन्न होता है क्या?
1: नहीं। तो
0: लेकिन अगर हम पढ़ा के बाद, किसके बाद?
1: पढ़ा के बाद
0: गया जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं?
1: गया,
0: तो अर्थ पूरा हो जाता है।
1: हाँ, गया क्रिया अर्थ प्रकाश करने में सहायता करती है।
0: गया क्रिया अर्थ प्रकाश करने में सहायता करती है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे?
1: सहायक क्रिया कहेंगे,
0: ठीक है।
1: जी हाँ,
0: याद रखो कि हिंदी में सहायक क्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं?
1: अनेक प्रकार की होती हैं। क्यों जी?
0: क्योंकि ये मुख्य क्रिया की कई तरह से सहायता करके अर्थभेद उत्पन्न कर सकती है। मुख्य क्रिया की विविध उपाय से सहायता करके अर्थभेद उत्पन्न कर सकती है।
1: जी कैसे?

0: बताता हूँ, चलो कई उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। क्या लेंगे? उदाहरण लेंगे, बिना उदाहरण के समझ में नहीं आएगी। जैसे कि एक वाक्य लेते हैं, बच्चा रो रहा है। क्या हुआ?
1: बच्चा रो रहा है।
0: रो रहा है। यहाँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सा है?
1: रोना।
0: रोना है मुख्य क्रिया। तो सहायक क्रिया कौन सा है?
1: रखना।
0: रखना नहीं, रहना, क्योंकि वाक्य है बच्चा रो रहा है। ये रोज है, रो का जो मूल रूप है क्या है? रोना। रो का मूल रूप क्या है? रोना। फिर से बता।
1: रो का मूल रूप है रोना।
0: रोना। और ये रहा जो है, रहा का मूल रूप क्या है?
1: रहना।
0: ठीक है, तो रोना है
1: मुख्य क्रिया
0: और रहना है
1: सहायक क्रिया।
0: तो देखते हैं, इसके माध्यम से कार्य चलने का समय का पता चल जाता है। ये समय का पता देता है, रोते रहना, रो रहा है। ठीक है, ये कार्य चलने की समय की अवधि की सूचना देती है। इसलिए यहाँ पर ये रहना जो है, ये काल सूचक सहायक क्रिया। क्या है?
1: काल सूचक
0: सहायक
1: क्रिया है।
0: ठीक है, काल सूचक सहायक क्रिया किस लिए? क्योंकि ये समय की सूचना देती है। ठीक है, किसको सूचना देती है?
1: समय की सूचना देती है।
0: इसीलिए इसे काल सूचक सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है
1: जी। हाँ गुरुजी।
0: दूसरी क्रिया के लिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, वो है चिट्ठी भेजी गई। क्या हुआ?
1: चिट्ठी भेजी गई।
0: तो यहाँ पर मुख्य क्रिया कौन सी है?
1: भेजना।
0: भेजना किसका मूल रूप है?
1: भेजी
0: का मूल रूप है भेजना, और ये मुख्य क्रिया है। और सहायक क्रिया कौन सा है?
1: जाना।
0: गई का मूल रूप है
1: जाना।
0: तो ये जाना जो है, यहाँ पर वाच्य सूचक सहायक क्रिया है। क्या है? वाच्य सूचक सहायक क्रिया है।
1: यह वाक्य क्या है गुरुजी?
0: वाक्य नहीं, वाच्य। ये वाच्य, वाच्य के बारे में पूछना चाहती हो तो सुनो, हिंदी में वाच्य जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
1: तीन प्रकार के होते हैं।
0: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्या क्या?
1: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
0: ठीक है, इन्हें हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब बताओ कि ये तीसरे उदाहरण लेते हैं। ये तीसरे उदाहरण में तुम्हें बताना होगा कि क्रियापद कौन सी है और ये क्या काम करते हैं। ठीक है, तीसरा उदाहरण में वाक्य है, शायद उसने पढ़ा होगा। क्या?
1: शायद उसने पढ़ा होगा।
0: इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सा है?
1: पढ़ना।
0: पढ़ा का मूल रूप क्या है?
1: पढ़ना।
0: और सहायक क्रिया कौन सी है?
1: होना।
0: ठीक है, ये होना जो है ये सहायक क्रिया है, और यहाँ पर ये सहायक क्रिया वृत्ति सूचक सहायक क्रिया के रूप में परिचित होगी, क्योंकि इसके माध्यम से संभावना वृत्ति की सूचना मिलती है। वाक्य क्या कहती है? शायद उसने पढ़ा होगा। ठीक है, संभावना वृत्ति की सूचना मिलती है, इसलिए यहाँ पर होना जो सहायक क्रिया है, ये वृत्ति सूचक सहायक क्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है,
1: यानी पढ़ा होगा या पढ़ा नहीं भी होगा।
0: हाँ बिल्कुल सही, ये जो पढ़ाई की बात यहाँ पर की गई है, शायद वो पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं भी होगा।
2: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर

बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेक राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

0: और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5,00,000 रुपए मिलेंगे।
0: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूं।
0: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़

0: भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। अब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
1: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कम्प्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
0: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रूपये का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रूपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रूपये तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है।

0: इसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके। तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए, ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर। इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है। और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो

0: इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हैंडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें तो ये जो पीएलआई स्कीम है ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
1: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई। और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
0: जी,
1: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट? तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट? इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी। और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
0: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
1: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
0: सर, अगर मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
1: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स हैं। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था। उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
0: लेकिन
1: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
0: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
1: ये बात ठीक है आपकी,
0: तो आप कैसे उस पर रोक लगा?
1: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
0: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
1: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये। इसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और दुनिया भर में इस

0: बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने के कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का। और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके, तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है। और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं

0: उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
1: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब एक रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
0: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूं कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं, राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था, सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपना इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहां से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे, जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो चाहे मिजोरम हो अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए

0: परियोजनाएं हाईवे कितना बन गया है, जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहां चकाचक हाईवे बन गए हैं। लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया, फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है।
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है, ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी, खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो, जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगे। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजॉर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहां दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आकर के फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इजराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रही है, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का

0: खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए। ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना तो मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं। दिन भर नारा लगाते रहते हैं, अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां हैं तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
0: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।
2: आपण कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्रर प्रचार करुछु श्रोतांक अनुरोधरे ओडिया कथाचित्र गीत पारिपल्लाई जाजपुरु लेखिछन्ति अक्षय महांती, सुजाता महांती, सरोज महांती ओ बाबाजी। आपणकर प्रिय कण्ठशिल्पी चित्तरंजन जेना गाइछन्ति कृष्ण सुदाम कथाचित्रे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या

0: कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमिपत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
3: ନମସ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ସହ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଭିଭିଜି ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ 95,692 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ଓ ମୁକାବିଲା ନେଇ ବ୍ରିକ୍ସ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ସେବା, ସୁଶାସନ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣର ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ନୂତନ ଐତିହାସିକ ଶିଖର ଛୁଇଁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ଦୀଘା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଧାମ ଶବ୍ଦ ଅପସାରଣ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 755ଟି ନୂତନ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏସ୍ଆଇଆର୍ଡିଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଭିଭିଭୂମିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଏବଂ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर।
2: अपन माने कार्यक्रम सुनुचंदी आकाशवाणी कटक केन्द्र प्रचार करुचु केतोटी ओडिया आलबम विभिन्न शिल्पी कंठरे। प्रथम शिल्पी निवेदिता गाई निजाम रचनारू।

0: ओडिशा सरकारंक उच्च शिक्षा विभाग आनिछि नुवा सुजोग एईडीपी अप्रेंटिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम पाठपढ़ा सहित काम शिखिबार सुजोग तृतीय वर्षरे मिलिबो स्टाइपेंड आसंतु दक्षता गढ़ीबा चाकरी पाई पथ सुगम करिबा अधिक सूचना पाई साम्स पोर्टल कु जाई आज ही आवेदन करंतु एईडीपी आज सिखंतु काली रोजगारक्षम हुंतु आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि एथिपई 30 मे 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलंग निकटरे दाखल करंतु एवं तांगठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुक ए कॉल विथ बीएलओ सुविधा रो उपयोग करंतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसा को द्वारा जनहित रे जारी
1: सुनो सुनो सुनो गा हेउ बा शहर ओडिसा वासिंग को पाई खुशी रो खबर कोन कहुनु छातरे सोलार पैनल लागिबो 1,38,000 पर्यंत सबसिडी भी मिलिबो आउ इलेक्ट्रिक बिल विद्युत बिल संचयर नुआ संभावना आनिछि पीएम सूर्य घर मागणा बिजुली योजना
2: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ
3: मशीन रे लुगा पकेबा पूर्वरु चेक करि नथिलो कि
2: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ एबे निकटस्थ बैंक जाई फटा पुराना नोट बदलांतु
4: जदि बैंक मना करे तो आरबीआई रो ओम्बड्समैन पाखरे अभिजोग करंतु आरबीआई कहे सचेतन हुवंतु सतर्क रहंतु
5: श्रोता बंधु सब उपरे आमे कहि परिबा सब सुखर कारण आमे

0: प्रभु ए मृतिका भंड प्रतिदिन बड़ हेब आम्भ मृत्यु दिवस बेलू जेपरी ता भितर सप्त सगर रही पारू आम्भे से ही सप्त समुद्र जल रे मुख दर्शन करी इह लीला त्याग करिबु
1: जथाज्ञा छामु
0: आउ राज्यर संवाद कौन चंद्र आउ सूर्य ठीक समय रे उदय अस्त हेउछंती कि नाही
1: हेउछंती छामु
0: प्रजा मानकु आवश्यक परिमाण आलोक पवन ओ जल मिलुछे कि नाही
1: मिलुअछि छामु
0: सेथि पई आम्भे एते दीर्घ दिन धरी सुशासन करि आसिलु
1: छामुंक व्यक्तित्व प्रभावरो देशरे कोनोसी जटिल समस्या नाही
0: आम्भे बज्रहु जने सुशासक
1: सुपंडित मध्य
2: हस्तिनापुर रे वर्तमान सुवर्ण युग छामु
3: सम्राटक नाम नगर जनपथ प्रसाद उपल्ल सबुटि स्वर्णाखर लिपिबद्ध होइ रहिबो
0: आम्भे एही रजत जयंतीर रात्रि को उपभोग करिबाकु चाहु
2: छामु हस्तिनापुरर श्रेष्ठ नर्तकी आज नृत्य परिवेषण करिबे छामु
3: कर्णाटक देशर कापालिक छामुक दरबारे भोजवित्त परिवेषण करिबे
2: गांधार देशरु सुगंध अतर आसिबो छामु
3: उड्र देशर दासकाठी
2: गौड़ देशर संकीर्तन
0: अमत्य ब्रह्मदत्त
1: छामु
0: अमत्य शिवभद्रंगु डकाई कुहंतु आम्भ भंडार समस्त खोला रखिबे
1: यथाज्ञा छामु
0: रास्तारे रास्तारे पूरपल्ली रे सोमरस बंटन करा जाऊ
1: छामु
0: आम्भे आदेश कलु आदि ठारु आम्भ साम्राज्य केवल अंधार भितरे परिचालित हेबो हस्तिनापुर रे आलोक प्रयास करि पारिबो नाही
1: यथाज्ञा छामु
0: अन्य राज्य मानकरे जेतेबेले सूर्य उदय हेबे आम्भ प्रजाकुल सेतिकी बेले गभीर निद्रा रे अभिभूत हेइ पड़िबे
1: संपूर्ण निद्रा नहले मध्य अर्थनिद्रा
0: ए राज्यर समस्त पशु पक्षी काक कुक्कुटंगु ए संवाद जणाई दियो ए राज्यरे आलोक ओ अंधारर प्रभेद रहिबो नाही
4: जय राजा बजरंगकर
5: जय
4: जय राजा बजरंगकर
5: जय
4: जय राजा बजरंगकर
5: जय
0: राजकार्यरे आम्भे जथेष्ट आनंद पाउअछु आम्भे प्रजावत्सल राजा तेणु आदि ठारु राजकार्य प्रमोदशाला ही संपादित हेब ब्रह्मदत्त
1: छामु
0: अमात्य शिवभद्रंकु आसिबाकु कुह
6: वीर श्री वीरवर प्रबल पराक्रमी सम्राट वज्रबाहु KCIEBL पद्मभूषण परम वीर चक्र MBBS PhD MMS सभापति IAF प्रतिष्ठाता विश्वेश्वर मंदिर PMG संपादक ICS शंकर जय हेउ
0: आसंतो आसंतो अमात्य शिवभद्र आम्भे हस्तिनापुरर रजत जयंती उपलक्षे एक नूतन आईन प्रणयन करिअछु
7: ए अकिंचन से संवाद जानिपारे कि छामु
1: सम्राट को आदेश रे आदि ठारु राज्य रे आलोक अंधार भितरे प्रभेद उठिगला एथु अंते ए राज्य रे केवल अंधकार ही अनुभूत हेबो
7: साधु उद्यम प्रभु सम्राटंक बिना किए नूतन युगर आह्वान देइपारे
0: शिवभद्र
7: छामु
0: राज्यर संवाद आम्भे पूछा करूछु
7: कर्णाटक देशर सामंत राजा आसिछंती छामु
0: शीघ्र तंकु एठा गोणा कराओ
8: महाराजा बजरबान कर जाया है
0: एक कर्णाटक जमीदार कोनो साधारण सौजन्य शिक्षा करिरांती
8: बाबा बाबा बाबा नैना आमर किस तापु किपु हे गेला किसे आज्ञा
1: हस्तिनापुर नर विष्णु को किपरि संबोधन करबा को हेबो ता कोन आपन को बुझाइबा को पड़िबो
0: अनर्ज को ता बुझाइ दियो शिवभद्र
6: वहा वीरश्री वीरवर प्रबल प्रतापी सम्राट वज्रबाहु
8: वीरश्री वीरवर प्रबल प्रतापी सम्राट वज्रबाहु
6: BA BL पद्मभूषण MBBS PhD
8: आ बाबा बाबा बाबा बाबा नहीं नहीं ये तो किस सोच की है BA BL पद्मभूषण MBBS
6: साधु साधु आहुरी कुह MIEPGS प्रतिष्ठाता विश्वेश्वर मंदिर
8: MIEPGS प्रतिष्ठाता विश्वेश्वरैया मंदिर
0: अमात्य शिवभद्र वर्तमान कर्नाटक

0: 되려니
1: 번쩍서티 털어 애하 암호를 건너고 고쩌러 놓티나 기보리 어마뜨
2: 에이너 건너가 탈뿐이 스리참 손이 탄데
1: 나 애떳더라 암회 늑허불 가서 걸로 걸린 걸 아주구만 애하 허스티나 뿌러러 뿌러모도 살아보니 니러월에 늑허 불가서 거리 소모배 떠나줘라 우추 니차라라에 허이틸에 어스름이 설전을 거리 탄디
0: 세탈에 부스커러니 아우 굿벌에 멋져 못냐후에 참우
1: 따헬에 싱겉더라 아거리 에코 비라토 스톰보 띠아리 해보 더티벌에 거링거 라지에 허이티바 번쩌서티터로 못냐로 거루로 찌뜨러 코디도 해보
3: 스리 자문거라 캬티 딕비드가레 프로사리도 해보 프로자만의 자니베 दिने राजा वज्रबाहु कलिंग खंडरे होई थिबा बन्या पाई दुख प्रकाश करथिले
4: श्री छामुंकर दुख देखि आम्हाखियो मध्य अश्रुनिगिरि पडुछि छामु
5: एपरि जणे प्रजा वत्सल राजाक समीपरे बसिछि बोली भाभी भाभी आम्हाखियो मध्य अश्रुनिगिरित होइ सारलानि
6: आपण माने एते कानिले बन्यावादी हस्तिर नगरक मध्य संक्रमित होइ पारे छामु
1: साधु साधु बन्या मध्य एक व्याधि
4: छामु ये व्याधि वर्तमान हस्तिना नगर को व्यापी गला
5: आसलानी छमु कलिंग राजकुमार सांगे बन्य मतलब
4: हस्तिना नगर नद नदी पगल हो जाती छमु
5: चारे बन्या जल
4: मिलूना कूल
5: लगुच मत डर
4: धर थर
5: बरसा झर झर
4: भासी गलानी घर
5: घर नुहे नर
4: भासिला फसल
5: भासीगला बिल
4: भांगा स्कूल
5: भासिला सहर
4: है छार खार
5: धर धर मत धर
4: मिलूना कूल
0: छामु ए हस्तिना नगर बन्या जल भासी जीव आपणकर सृष्टि प्रलयर सम्मुखीन हेबो ए नगर को रक्षा करंतु प्रभु
1: अंधे प्रजा वत्सल राजा अंधे निश्चय हर प्रतिकार करिबु
0: किपरि छामु
1: अंधे आदेश कलु नदी मानु को हत्या करो ए माने अबाध्य राजा वज्रबाहु को शासन काल रे कहीं अबाध्य हेई नाहंती मु जल मानु को शास्ति देबी
2: किंतु यह कौन संभव छामु
1: कहीं संभव नुहे आंभ राज्य आकाश रे एक छात पकाई दिया जीवो
2: छामु
1: हाँ हस्तिना राज्य पंच शत सहस्त्र योजन आकाश उपरे एक छात निर्माण करा जीवो तेणिकी जेते मुसलधारे वर्षा हेउना कहीं हस्तिना साम्राज्य रे जेमिति बिंदु मात्र जल न पड़े
0: पंच शत सहस्त्र योजन आकाश आउ ता तले एक छात केते अर्थ जे आवश्यक हेब तार कलना करियो नाइ छामु
1: अमात्य शिलभद्र
2: छामु
1: अंधर समस्त भंडार शेष हे जाउ पछे अंधे बन्य को निश्चय नियंत्रण करिबु
2: श्री छामु का भंडार रे एते अर्थ नाही प्रभु
1: समग्र राज्य रे धेंडुरा पिटी जड़ाई दियो आकाश छता योजना पाई समस्त बेठी घटिबे गुरुकुल आश्रम मान को बंद कर दिया जाउ आज ठारु आचार्य ओ ऋषि पुत्र माने ईटा पत्थर बोहिबे
0: श्री छामुंक मस्तिष्क आउ ठीक काम करू नाही प्रभु बोध हुए आपण को क्षुदा अनुभूत हेउ अछि आपण मणोय उपलक्ष्य विजय हुंतु छामु
1: साधु साधु तुम्हे आंभ मन कथा ठीक जानी पारु अछ ब्रह्मदत्त आज राजकार्य एतिक रे बंद रखागला विदूषक द्वय
4: छामु
1: आपण मानक उपरे प्रीत होई आंभे आपण मानक भोजन सभा को निमंत्रण कलु आसंतु सेठारे उपवेशन करी आंभर मनोरंजन करन
4: हां छामु

0: हस्तिनर राजवंश तेबे कण संतान बिहुने हेब एक शुष्क मरुभूमि प्राचुर्यर मणिहन्न जलिजीव एई मोर धूसर प्रतीक्षा व्यथा दूर गरम निश्वासी मु कण चिरदिन चाहिथिबि दीर्घश्वासी झड़परी पुंजीभूत शून्यतार कुंडली आवर्ती राजकण नपुंसक इदिशर आकाशरे वृष्टिर कार्पण्य शस्य क्षेत्र शून्य एठी अभिशाप गम देवतार
1: आश्चर्य हुओ नारायणी मु एक कायाहीन अशरीरी मन अछि स्वप्न निष्क्रमित मु बंचिछि क्षमतार ज्वलंता नियारे ए राज्यर प्रजा हेबे निष्कंटक स्वर्ण युग हस्तिना नक्रर मु बांटुछि अपर्याप्त राति पुणि स्वप्न सहस्र विघार मु क्षुद्र मानव नुहे जैविक सृष्टिर मु सम्राटनर विष्णु हेब नाही आमर मिलन मो गृहे संतान तेणु कलंकर चिह्न
0: सम्राट आपण मते काहेकि सृष्टिर स्वप्नर वंचित कले सम्राट टिके स्वप्न चाहे सबुज क्षेत्र टिके स्वप्न चाहे पल्लवित बसंतर हे भगवान राणीमा
2: राणीमाको मन आज विरस काहेकि
0: शून्यता इते सखी इते धन इते अलंकार तथापि मु जळे काहे सीमाहीन क्रमश जंत्रणा प्रतिश्रुतिहीन राति मो सुप्त चेतना सबु स्नायुर बिनारे गाउछन्ति अनायत्त प्रार्थना संगीत जाणी को जाणी प्रमोद शाळारे जन्म अनेक भाजिल से निश्चय भियाईछि राणीमांको मन तळे आउ एक ज्वलंत उन्हीं
2: एवं राणीमांको देह मन स्नायु तप्त खाली उठे दीर्घ श्वास गति एक नूतन आकाश राणीमा की खोजुछन्ति हजिला विश्वास
0: हाँ सखी।

0: चम्राट ब्रजबाहुंको जुगाड़ चेन चौदागर मान जनाऊ
1: आस आस श्वेतांग सौदागर आस आम भी चूड़ी बाकू पाइलु जे चम्राट को राज्य रे बहु प्रजा बुद्धिमा मत शिलभद्र श्वेतांग सौदागर कौन कहते किसी बुझी ना
2: से कहते आंभ देश प्रचुर बुद्धि अच्छी
1: पुणी कि द्रव्य शिलभद्र
2: शिक्षा द्वारा बुद्धि आसे बुद्धि द्वारा बहु असाध्य कार्य संपादन करा जाई पारे छमु
1: अच्छा एमन तो कथा आंभ देश रे ताहेले बुद्धि अछि
2: आंभ देश रे ताहा अनेक परिमाण रे अछि छमु
1: आंभ भंडार घरे ताहेले केत्ते परिमाण रे बुद्धि अछि
2: बुद्धि भंडार घरे न थाय छमु ताहा मस्तिष्क भीतर थाय
1: बेस आजि घोषक द्वारा कथाटा जणाई दियो
2: कोन बोली जणेबि छमु
1: हस्तिनाग्र सम्राट द्वारा आदेश दे राज्य प्रजा मानते परिमाण में बुद्धि अच्छी से सब को अमात्य शीलभद्र ठारे जमा देवे
0: किंतु जब बुद्धि क्राय करिबु ना कारण विभिन्न देशर मस्तिष्क किणीला पर देखिलु से अनेक गोपुर बाहरला एवं आम व्यवसाय मार खाइला
1: ए देशरे उत्तम बुद्धि थिबा मानव केते जण अछन्ति अमात्य शीलभद्र
2: छामु निजे थाउ थाउ ए देशरे जे आउ कहारी बुद्धि थिबो से आसा मोर नाही
0: बुद्धि खोजिबा पाए अनेक समय लागिबो ए सम्राटंकर अनुमति मिलले आबे जाय बुद्धि अन्वेषण करिबु
1: बेस आदेश प्रदान करा गला
0: चाचा
1: कहतु अमात्य शीलभद्र राज्य संवाद कौन
2: छामु देश चारिआड़े मरुड़ी पड़ी बहु लोक अनाहर मृत बोली संवाद पहुंची
1: आश्चर्य प्रजा मैंने हटात एमती मले कहीं

0: ए देशर कोटि कोटि जनता आगे आसुचंती हस्तिनार सिंह द्वार को ए अरकड़ी भांगी जीव लोह कबाट भांगी जीव ए स्वार्थ से राज अभिजात्य आसंतु वर्तमान भी समय अच्छे ओल्ह आसंतु से सिंहासन
1: ब्रह्मदत्त मु तुमको पांच सहस्त्र हस्ती अश्व देवी ग्रामधान देवी गवादी पशु देवी चारण भूमि देवी सुवर्ण मोहर देवी पुरस्कार देवी सम्मान बद्ध देवी ये आंदोलन बंद कर ब्रह्मदत्त
0: ना मु किछे चाहे ना मो स्वार्थ पाई मु अर्थ सम्मान पुरस्कार किछे चाहे ना मोर आखि खोली जाइछे सम्राट मु चाहे स्वेच्छाचारी शासन मृत्यु ए फकीरा पटुआर जय हो
1: ठीक अच्छे मो मृत्यु लोक को गमन करी
0: शीघ्र जातु शीघ्र वर्तमान भी समय अच्छी सम्राट हृदय बुद्धि शेष हो गला राज्य मनुष्य नहांती समस्ते समस्ते पशु राजधानी रास्ता एक जंगल से सिंह व्याघ्र गयल और सर्प मान अच्छा देख सम्राट सुवर्ण प्रासाद को मारी आसुंती से माने तुमको टेक टेक कर चिरी पकाइबे क्षुधार्थ पशु मान तमे हेब राति शेष आहार तम देह चर्बी अच्छे ए राजगति छाड़ दि सम्राट आदेश दियो जे तमे मृत आसो ओलाई आसो सिंहासन छाड़ी दियो आदेश दियो
1: हाँ दौची अपेक्षा कर अपेक्षा कर अम्भे राजा वज्रबाहु एतद्वारा घोषणा करूछु जे आज रात्रि शेष प्रहर रे निजको हस्तिनार सबुठारु घृण्य पापी हिसाब रे अभिषिक्त कलु आगामी सकाळ रो सूर्योदय पूर्वरु विश्वेश्वर पुष्करणी रे स्नान समापन करि हस्तिना नगर रो राजदंड रे भ्रमण करिबु एवं राजधानी रो सबुठारु जनाकीर्ण छक उपरे कोटि कोटि भूख जनता आगे शुणीदंड पाइबू
0: सिंहासन चाहे ना सम्राट मु चाहे मनीष शासक शिकार हो अनाहारे नमर ए तरबारी मोर आ दरकार ना सम्राट आपण मस्तक खोला होता यह मुकुट पाखे रखिद देख सम्राट पूर्वधिक रक्तिम सकाल आलोक सिंदूर हो फाटी पड़ुचे सते जमी एक नूतन सृष्टि एक नूतन सूर्योदय।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: 같아요.
1: 이들어 아버님 힐리 수닐칸토 모한티 실루 아크루티 देवकर संकट रसो कटक्रु आपने अनुरोध करिछंती प्यार किया है प्यार करेंगे चलचित्र टाइटल संगठी को सुनवाप आपणकर अनुरोध रीत सुनाई दौ गीत जुगल कंठरे गई समीर कुमार एवं कविता कृष्णमूर्ति।